0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर डॉट कॉम।
1: My ears, best piece of music equipment I own. They've been with me through everything, even the 90s. Back when you'd hear about parties from photocopied flyers, before outdoor raves moved indoors. And now, the music's changed, but I wanted to make sure my ears hadn't. So I did the free online hearing screener from Specsavers and got on the test list. Only took 3 minutes. It's like my own little sound check. Try Specsavers free online hearing screener. Visit the website to find out more. Hearing screener is not a diagnosis.
2: दुनिया के एक जाने माने केरला हर्बल आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट वैद्य भूषण एस जी अर्जुन 35 साल से आपकी सेवा के लिए लाए हैं ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन फॉर एस्मा, सोराइसिस, डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम, एसिडिटी, वेट लॉस। उनके पास 300 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स के लिए हर्बल दवाइयां हैं। उन्हें मिलने के लिए आज ही आइए यूनिट 8 ट्रेडर वेम्बली, 87 ईरिंग रोड, या कॉल कीजिए 0746997575। दैट्स 0746997575।
3: Now, the weather.
4: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
5: But inside, temperatures of toasty warm, with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
6: Legendary flavors from legendary Xbox games are now at McDonald's. Crispy golden garlic and black pepper McNuggets. Cheesy potato bites from Fallout 76 and Candy Crush McFlurry. The main mission can wait. Take a side mission to McDonald's.
7: Available until the 29th of September from 11 a.m.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी एंड अल्तमश फरीदी। दो नैनों के पेचीदा से गलियारे, इनमें खोके तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, ऐसा कभी सुना है आपने? से आप सुन रहे सनराइज पर आज फ्राइडे की सुबह शबनम साही के साथ। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस, बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
0: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.

0: जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। उमराव जान का ये गाना तलत अजीज की आवाज में, जिसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज फ्राइडे की सुबह शबनम साही के साथ। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.

0: Yeah. That's song number two. Which one do you want to hear though? Choice is yours, not mine. 07925 700 272 to get me your choices.
1: Kavita on Sunrise with Sony TV. What happens when celebrities meet Bharti and Harsh? Chaos, comedy and crazy games. Get ready for a celebrity game night. Watch the Indian game show tonight 8 p.m. on Sony TV. Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208-574-8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
2: This month, Mera Boiler is offering a pre-booking sale with a £350 discount on all Bosch boilers. Get a fully fitted 25-kilowatt Bosch boiler for just £1,875. Complete with a 7-year guarantee. Call 020-8150-2025 or visit meraboiler.com now. T's and C's apply.
3: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए
3: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए
3: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ
5: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना
4: वसीम ज्वेलर्स।
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: Dad, where have you been?
4: I went to supermarket, snack shack chahida si, big cricket match today on TV and movie afterwards.
7: We had popcorn and crisps, Dad.
4: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with chatwal milia.
7: Uncle Chatwal?
4: Nahin, chatwal de namkeen range, plain bhujia, aloo bhujia, khatta meetha, neemu masala, navratan mix and moong dal. Oye, main full selection chak le aaya.
8: Chatwal's mazedar spicy Indian snacks. Our award-winning great taste of 2026 winners. A brand by SOP International. Now available at major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets. Enjoy with family and friends.
2: London, get ready for an unforgettable night. One UK show only. Legendary Ustad Raat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan, comes to the O2 Arena, London on the 18th of April, 2027. Brought to you by Pantheon.

0: to availability. Participation varies.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली, ओपन ट्यूजडे टू संडे।
2: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
3: Hi, I'm Sonia Dutta. Don't forget to join me on Drive Time, weekdays from 4 PM with Pepe's Piri Piri. You know I like to boggle your mind with all the fun and games, so if you like a challenge, tune in and get involved. See you there.

0: celebrating 36 years of excellence.
1: Music.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
1: Sunrise Radio.
2: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
0: Treat your customers and your team to the rich, authentic taste of Royal Chai, their favourite chai anytime. Get Royal Chai vending machines free. Yes, absolutely free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.
3: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 7:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft.
4: Meri zindagi hai tu.
0: Pepe's presents the Asim Ali Tour 2026. Brought to you by Carpe Diem Experience and IMP Live. Get ready for three massive nights this September as Asim Azhar hits the stage live across the UK. 18th September, Birmingham at the Forum Digbeth. Get tickets at forumdigbeth.co.uk. 19th September, Bradford at Bradford Live. Get tickets at bradfordlive.co.uk. And 20th September, London at Troxy. Get tickets at troxy.co.uk. London and Birmingham tickets also available on Ticketmaster. Don't miss out on the tour of the year. Grab your tickets now and find full tour details at asimazhar.com/tour. Radio partner Sunrise Radio.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है. ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर. सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम. फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com.
0: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 0208-8574-7777.
2: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
0: This is Sunrise, the UK's biggest.